0: ये है
1: लाइका रेडियो.
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउन हाउसेज.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक्स, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio.
0: Traffic and travel.
3: I'm Greg Edwards. Traffic's on the move out on the motorways in the area, including the M1 and the M69, also the M40 and the M42. In Leicester, Wharf Street South is still closed because of an unsafe building. Traffic's diverting between the A494 St Matthews Way and Gladstone Street. In Wolverhampton, an accident has closed the southbound side of Waterloo Road. Traffic's diverting from Oxley Street while investigation work is underway there. In Walsall, a police incident means Western Street is closed near to West Bromwich Street. Transport for Wales trains aren't running still between Birmingham International and Wolverhampton. And that's your latest traffic and travel.
4: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
0: Like a radio.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
8: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर द
9: स्टार। एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
8: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
10: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
11: Create terror.
8: देखो द स्टार तुहाड़े नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
12: एक सिंह दा पुत्तर द स्टार सजाऊंगा भी ते द स्टार लई लड़ूंगा भी।
13: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स, द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा।
14: नजर से नजर
13: परफॉर्मिंग लाइव इन बर्मिंगहम ऑन फ्राइडे 31st जुलाई एट ऑलबरी बर्मिंगहम। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventbrite.com। हरी, लिमिटेड सीट्स रिमेन for this intimate live concert. Tickets just £25, including

0: Good morning. स्वागत है आपका मौसीकी की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है मनोरंजन प्रोग्राम। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। थैंक्स टू काजल, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और अब से लेकर 3 घंटे तक गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार कुछ गंभीर बातें और कुछ दर्द भरे गीत भी आज के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बात मोहब्बत से करें शुरुआत। बड़ी अनमोल शह है ये, सभी जज्बों पे भारी है। खुदा ने ये जो एक जज्बा मोहब्बत का बनाया है। घड़ा कच्चा था तो क्या, इश्क तो सच्चा था सोनी का, डुबो कर खुद को दरिया में ये साबित कर दिखाया है। न तपती रेत की परवाह की लैला ने सहरा में, था मजनू जिस पे शायद रेत पर वो तन जलाया है। थी मदहोशी मिलन की इस तरह से हीर पर तारी, वो पी बैठी जहर ये सोचकर अमृत पिलाया है। कहां फरहाद में हिम्मत थी सीना पर्वत का चीरे, था सच्चा इश्क जिसने दूध का दरिया बहाया।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica.
0: बड़ी अनमोल शह है ये, सभी जज्बों पे भारी है। खुदा ने ये जो एक जज्बा मोहब्बत का बनाया है। क्या कहती हो तुम, बोलो कुछ तो बोलो।
2: चुपचाप तू

0: बैक टू बैक संगीत हमने परोसा और भाई हमारे श्रोताओं को पसंद आया, आपके संदेश आने शुरू हो गए हैं और क्या खबरदार जो आपने मुझसे फुटबॉल के बारे में कुछ पूछा था। और बहुत काम है भाई मुझे, मैं इतना फ्री भी नहीं हुआ कि मैंने नहीं देखा मैच कल का, क्या हुआ मुझे क्या पता। आगे की बात कीजिए, नोटों की बात कीजिए, पाउंड्स की बात कीजिए।
1: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, अच्छा रेट मिल रहा है, मौका है, भेज दीजिए पैसे अपनों को हिंदुस्तान में। वेल फॉर वन पाउंड टुडे दे आर गिविंग 129.7 रुपीज, 129 रुपए और 70 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई SBI योनो मोबाइल ऐप इस्तेमाल करके पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: रैकलो वाले कह रहे हैं आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ मैच में, आपको बोलना पड़ेगा। शर्मा जी कहां तक चुप रहोगे, खामोश रहोगे। देखिए साहब जो हो गया सो हो गया। हाँ इसमें क्या है, मुझे याद है कि जॉन मेजर जब चुनाव हार गए थे यहाँ तो लोगों ने घेरा हुआ था और उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा था, ये पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, सो वी लॉस्ट। बड़ी गरिमामय वाणी में भाई, हार नहीं होती है। वो पहले हम कहते थे कि फुटबॉल कमिंग होम, नाउ फुटबॉल टीम कमिंग होम। नो टीम नहीं आ रही है भाई। आप क्यों भूलते हैं कि तीन अवार्ड होते हैं मैच में, पहला फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड अवार्ड। तो लेट मी टेल यू, सैटरडे 18 जुलाई को इंग्लैंड की टीम फ्रांस के खिलाफ भिड़ेगी, रात 10 बजे मैच होगा और हम सब, आप भी हम भी जागेंगे और भाई अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए देखेंगे। तीसरे स्थान पर तो कब्जा हमारा होगा ही होगा। वैसे आपको बता दूं, अर्जेंटीना की टीम मेरे नाम लिखी थी इन्होंने, हमारे स्टाफ ने, और इंग्लैंड की टीम लिखी थी खुश के नाम। अरे वो तो पहले ही खुश थी भाई, उसको और खुश करने की क्या जरूरत है। लेकिन साहब हमने भी खुश होने के लिए अर्जेंटीना को जिता लिया और कोई पता नहीं है कि भाई वर्ल्ड कप भी वही उठा के ले जाएं इस बार। पर जो भी होगा, आपको पहले 18 जुलाई को जुड़ना है फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड फॉर द थर्ड प्लेस फाइनल में, और उसके बाद 19 जुलाई को होगा फाइनल मुकाबला। जो भी होगा आपके लाइका रेडियो नेटवर्क पर उसका चर्चा होगा। एंड लेट मी रिमाइंड यू भाई, ये जो जानकारी आप तक पहुंचाती है हमारे स्पॉन्सर्स, they say that you can get 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box, 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils, 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi, 2.99 per kilo. Offers one. Valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
4: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: Lester Mela is back
7: and the stage is about to explode. Confirmed artist
6: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
7: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
7: Arts Council England.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: इट वाज जस्ट अनदर डे, अ फैमिलियर ड्राइव थ्रू फैमिलियर कंट्री, बट देन जस्ट अराउंड द कॉर्नर came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is,

0: part of the Leica Radio Network. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: लौट आइए मेलोडी की तरफ, सुर और ताल जो करते हैं कमाल। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजें हैं और ये मधुर धुन

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: और लाइका गोल्ड के भाई स्क्रीन पर जो है संदेश आ रहे हैं हमारे श्रोता, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अर्जुन कहती हैं, मुझे पसंद आ रहा है कार्यक्रम। आंटी जी सलाम वालेकुम व रहमतुल्ला। भाई आप कह रही हैं, रवि जी

सुबह सुबह ना क्या करते हैं माइक के सामने बैठ करके? आपने क्या कर दिया? वो कर दिया, मुझे हंसा दिया। देखिए ये तो मेरा काम है जी, मैं कोई पैसे थोड़ा ही लेता हूँ हंसाने की, फ्री में हंसा रहा हूँ। वैसे आप भेज दें तो मैं माइंड भी नहीं करता हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन आपने कहा है कि रवि जी यू आर नॉटी बट नाइस, यस आई एम, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री, आपका संदेश मिला है, गुड मॉर्निंग। कहते हैं इट वॉज सो सू प्लीज टू मीट यू यस्टरडे। जय श्री, कहां मिले थे हम? ओ बीकानेर वाला में, नाइस टू सी यू, थैंक यू वेरी मच भाई। बहुत लोग मिले, प्यारे प्यारे लोग मिले, न्यारे न्यारे लोग मिले। फरहत हुसैन जो एक जमाने में बड़े बड़े सितारों को यहाँ लाया करते थे, अब फिर उन्होंने रुख अमेरिका की ओर ले जाना शुरू कर दिया, पर मुझे पूरा यकीन है कि फिर कॉन्सर्ट्स होंगे और वो फिर लाएंगे। हमारे किशोर पांड्या भाई, आपसे मुलाकात हुई, और बंकिम देसाई जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और सुनील चोपड़ा जी, अरे साहब ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे लोगों से मुलाकात हुई, और दीक्षित, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस देयर। अग्रवाल परिवार के लोग, गोयल परिवार के लोग भाई, वो पंकज भाई और उनकी सारी फैमिली जो है वहां पर आए हुए थे। बीकानेर वाला ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राजस्थान या कम से कम बीकानेर जो है वो लंदन में छा गया है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भाई, हमारी सारी टीम वहां थी आपको मुबारकबाद देने के लिए। एंड द मेयर केम एंड ही डिड द रिबन कटिंग। मैं अपनी कैची घर भुलाया था, नहीं तो मैं भी कर सकता था। खैर साहब छोड़िए, क्या रखा है सच्ची बातों में, मैं बातें इधर उधर घुमा करके ना वो फुटबॉल वाली बात जो है इधर उधर करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बात तो ये भी है, प्रधानमंत्री सर स्टामर कह रहे हैं भाई रवि जी ये संभाल लो आप, मैं तो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट की चाबियां किसी को देने वाला हूं। देखिए सर मैं तो फ्री हूं नहीं, आप उसको दीजिए ना, एंड वो तैयार है, वो लेने आ रहे हैं भाई। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यूक्रेन को ब्रिटेन की सपोर्ट जारी रहेगी, भले ही प्रधानमंत्री बदले, नीति नहीं बदलेगी। और भाई अब बता दें कि सोमवार को इन्होंने चाबियां नए आगंतुक प्रधानमंत्री को सौंप देनी है, ये तो यहां की बड़ी खबर है। इसके अलावा और जो खबरें हैं आइए देखते हैं, द टाइम इज टू ब्रिंग यू द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। शुरुआत अमेरिका से करें, अमेरिका के यूटा राज्य में एक इंडियन पर कथित तौर पर उसके धर्म के कारण चाकू से हमला किया गया है। ये धर्म पूछकर या धर्म को आधार बना करके जब अटैक किए जाते हैं, लगता है भाई लोग हिंदू धर्म से कुछ खास तरह की नफरत पाल लेते हैं बिना कारण के। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शख्स को करीब 15 बार चाकू मारा गया। ये घटना वेस्ट वैली सिटी स्थित वैली सिटी मॉल में सोमवार को दोपहर को हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक माल में काम करने वाले इस हिंदुस्तानी व्यक्ति, भाई ये हिंदू नहीं था, ये हिंदुस्तानी था, क्योंकि नाम है उनका सैयद सोहेलुद्दीन, पर पीटर माइकल लॉर्सन ने कथित तौर पर हमला किया उनके धर्म के कारण। मुस्लिम धर्म से भी लोग पता नहीं क्यों, नहीं पता है कि कुछ घटनाएं दुनिया में हर धर्म के व्यक्तियों के साथ जुड़ी होती हैं, पर उसको लेकर के पूरे मजहब के साथ ऐसा होता है। यह खबर अमेरिका से आई है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने हमले से पहले उस शख्स से उसका धर्म पूछा था। भारत से आने वाली अन्य खबरों में, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। दिल्ली में जंतर मंतर पर वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने वांगचुक को अनशन खत्म करने की अपील की है। इसके अलावा वांगचुक की हेल्थ को लेकर के सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सतीश लांबा ने 19वें दिन का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर लांबा के अनुसार अनशन के 19वें दिन तक सोनम वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। हालांकि उनके बदन में पानी की मात्रा फिलहाल सामान्य बनी हुई है और वे मानसिक रूप से दिमागी तौर पर पूरी तरह से एक्टिव हैं।
अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने ऐलान किया है कि अब 30 साल और उससे ज्यादा की उम्र के सैनिकों की सालाना हेल्थ जांच में टेस्टोस्टेरोन की कमी की जांच की जाएगी। हेगसेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में इस नए कार्यक्रम की जानकारी दी है। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दावा किया है कि इजरायली सरकार और इसके समाज के भीतर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईरान के साथ जारी युद्ध को बेवजह लंबा खींचना चाहते हैं। उनका इल्जाम है कि ऐसे तत्व अमेरिकी पॉलिसी और जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं लड़ाई जारी रहे। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान को वॉयलेंस रोकने और पिछले महीने हुए समझौते के आधार पर दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए एनकरेज करता रहेगा। भले ही भाई कल एक बयान आया था ईरान के वाइस विदेश मंत्री का कि पाकिस्तान समझौता जैसी कोई चीज अब बाकी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन ताहिर अंदराबी ने कहा कि समझौते को लागू करने में कई नई चैलेंजेस, कई नई चुनौतियां हैं, लेकिन पाकिस्तान सभी पक्षों से वॉयलेंस समाप्त करने और टेक्निकल लेवल पर बातचीत फिर से शुरू करने की सिफारिश करता रहेगा। आज दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। बैठक में चंदा चोरी, आस्था के साथ धोखा, शिक्षा व्यवस्था पर लगातार बिगड़ना, संस्थाओं पर कब्जा और पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने की कोशिशों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है।

0: मैच की बात करें क्या? करनी तो पड़ेगी भाई, न्यूज तो न्यूज है। और मैच के बारे में न्यूज ये है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। देखिए साहब, पहला गोल हालांकि इंग्लैंड की ओर से किया गया था, लेकिन बाद में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने बड़े रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। अब अर्जेंटीना का सामना 19 जुलाई को न्यूजर्सी में स्पेन के साथ होगा। कल अटलांटा में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने एंथनी गार्डन के गोल की बदौलत 85वें मिनट तक 1-0 की बढ़त बनाए रखी। देखिए बिल्कुल समाप्ति के नजदीक जा रहे थे, लेकिन मैच के आखिरी पलों में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए बाजी पटक दी और साहब ये मुकाबला 2-1 से जीत कर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। कांग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना। बहुत सारी तसली इंग्लैंड को। और भाई याद दिला दूं आपको कि इसे आप पूरी तरह से बाहर मत समझिएगा इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस का मुकाबला सैटरडे को 18 जुलाई को तीसरे स्थान के लिए होगा और ये भी टक्कर जबरदस्त होगी। तो स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: मैं जिन जिन को जो जो गीत पसंद आ रहे हैं वो अपने नाम करते चलें, मैं इन वॉइस भिजवा दूंगा बाद में। शर्मा जी, हंसी के ठहाके सुनवा करके आप कुछ भूल रहे हैं क्या? यही कि आज बृहस्पतिवार है, दर्द भरे गीत कहां हैं? देखिए साहब, दुनिया में हर किसी का कोई न कोई अपना होता है, लेकिन हर किसी के पास एक टूटा हुआ सपना भी होता है। अपने भी होते हैं, सपने भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये सब खनकते सिक्के हैं, इनमें खरा कोई नहीं। यूं तो सब कहते रहे कि दोस्त मैं तुम पे मरता हूं, पर मरा कोई नहीं।

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious. Caratino Better Ghee. The healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: जी टीवी एच डी पर देखिए एक नई कहानी.
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
4: दिल तो टूट भी गया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
6: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa play Laika Radio Punjabi Punjabi.
1: Get ready for the ultimate test of courage. Season 15, hosted by action maestro Rohit Shetty.
2: Welcome to Durga Capital, Cape Town.
1: Bigger stunts, tougher challenges, and fearless contestants battling it out like never before. Don't miss the adrenaline rush, starting this July on Colors TV. Are you ready to face your fears?
3: Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
4: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at laikagold.com.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
6: लौट आइए फिर से संगीत की ओर गीतों की ओर बातों की ओर. आशा भोसले नवीन निश्चल गा रहे हैं कुछ बता रहे हैं नोट कीजिए. और इसी बीच भाई हम धन्यवाद पहुंचा रहे हैं शोभना राय जी को निर्मला जी को पम्मी सिंह और स्लो वाली रानी जी राजेंद्र राज साहब थैंक यू वेरी मच भाई. आप सब जुड़े रहें ये हमारी दुआ है आप और हम साथ मिलके चले हैं. आप ही हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं करवा रहे हैं. ब्लेम नहीं कर रहा हूं क्रेडिट दे रहा हूं. आप ही हैं जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम है ये रेडियो है ये कौन है वो

तू ही है रुकैया, तू ही तू है हंसाजीत। अनिल सॉरी साहब, आप ही तो हैं वियना में सुन रहे हैं। और देखिए इंडिया में, भारत में आप सुन रहे हैं सत्यनारायण सैनी जी।

और मेरे भाइयों, ये गीत हर भजन मान की आवाज में सुदेश कुमारी के साथ, क्या बात है। हर भजन मान की आवाज कर से बात सुनकर के हैरान तो होंगे आप, लेकिन याद दिला दूं भाई, हर भजन मान एक्टिव हैं और जर्मनी फ्रैंकफर्ट में अपना लाइव शो भी कर रहे हैं। हमारी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं मान साहब।

0: स्वागत है मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में श्रोताओं का। माय नेम इज रवि शर्मा। कार्यक्रम लेकर मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं। इस वक्त ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। जी हाँ, चिंतन का समय है और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, हमारे साथी का भेजा एक आलेख। ध्यान से सुनिएगा। बख्शीश सिंह ने यमुनानगर हरियाणा से भिजवाया है ये चिंतन और कहते हैं कि हर धर्म हर मजहब में टीचर की, उस्ताद की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्हें बड़ा मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। कहते हैं कि एक बार खलीफा हारून अल रशीद बगदाद शहर का मुआयना करने निकले और रास्ते में उन्हें एक आलीशान बिल्डिंग दिखाई दी, इमारत थी जिस पर मदरसा अब्बासिया लिखा हुआ था, तख्ती लगी थी। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, भाई हमारे साहबजादे अमीन और मामून इसी मदरसे में तालीम हासिल करते हैं ना? तो वजीर ने कहा, हां जनाब। खलीफा शासक एडमिनिस्ट्रेटर राजा घोड़े से उतरा और उसने मदरसे में एंटर किया तो वहां उसे एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हाथ मुंह धोता हुआ दिखाई दिया। वो उस मदरसे का उस्ताद था, टीचर था। हाथ मुंह धोने के बाद उसने बादशाह को सलाम किया और सलामी का जवाब देकर खलीफा बोला, हम आपके मदरसे का मुआयना करने आए थे लेकिन हमें ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि यहां पूरी तालीम नहीं दी जाती है। उस्ताद ने घबराते हुए कहा, गुस्ताखी माफ जनाब, हुजूर हमसे कोई गलती हो गई क्या? खलीफा ने कहा, आप जब हाथ मुंह धो रहे थे तो हमारे साहबजादे भी वहां चुपचाप खड़े थे थोड़ी दूरी पर। दरअसल उस्ताद की जगह बहुत ऊंची होती है और उसकी खिदमत करना हर शागिर्द का फर्ज होता है, मगर हमने पाया कि हमारे साहबजादे चुपचाप खड़े थे, उनको चाहिए था कि वो आपको पानी लाकर देते और आपके पैरों पर पानी डालते। मालूम होता है आपने उन्हें ये तालीम नहीं दी। ये सुनकर उस्ताद हक्का बक्का रह गया और साहबजादे अमीन और मामून तुरंत भाग कर गए पानी लेकर के आए, पर साथ साथ वो शर्म के मारे गड़े जा रहे थे। हर व्यवस्था में, हर कानून में कहते हैं कि हर नियम संयम में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। उस्ताद, टीचर जो हमें जीना सिखाता है, जीवन के नियम बताता है और कई सिस्टम्स तो कहते हैं, कई प्रथाओं में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अरे गोविंद की जानकारी तो गुरु देता है, यानी उससे पहले हम जानते भी नहीं कि ईश्वर कौन है,
1: चिंतन
0: कहाँ है।
1: चिंतन
0: गुरु की बदौलत उसकी प्राप्ति होती है, टीचर की बदौलत हमें नॉलेज मिलती है जो हमारी जिंदगी का आधार होती है। तो गुरु के प्रति सम्मान की भावना हर मजहब में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
1: चिंतन, चिंतन।
0: तो साहब ये है आज का चिंतन, आज का विचार, गुरु का स्थान कितना ऊंचा होता है।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें बख्शीश सिंह ने भिजवाया था साउथ हॉल से। चिंतन के साथ जो दोहावली सुनी वो विशु भटनागर यानी कुमार विशु की आवाज में थी। और बहन भाइयों, चिंतन का संदेश गुरु का गौरव सम्मान का पात्र है। गुरु गोविंद दो खड़े, कहीं कहीं ईश्वर से भी अधिक दर्जा गुरु को इसलिए दिया जाता है कि ईश्वर से वह गुरु मिलवाता है, ईश्वर की जानकारी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में तालीम पानी है तो भाई झुक करके गुरु का मान कीजिए, गुरु का अपमान मत कीजिए। आज का चिंतन, आज का विचार समेटते हुए याद दिला दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं कि भाई आज का रेट बड़ा अच्छा है, अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो मौके का फायदा उठाइए और उनकी किसी भी ब्रांच में जाकर के या ऑनलाइन या फिर यूके मोबाइल ऐप जो उनका है योनो, उसके माध्यम से पैसे भिजवाइए। आज का रेट 128 रुपये 70 पैसे चल रहा है। And don't forget, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: Leica Radio.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: और याद दिला दें हम आपको भाई, भले ही सेमीफाइनल में जो है इंग्लैंड की हार हो गई है और इंग्लैंड की टीम जो है फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई है, परंतु तीसरे स्थान के लिए उनकी भिड़ंत होने जा रही है शनिवार को फ्रांस के साथ। देखना यह है कि टॉप तीन टीमों में इंग्लैंड की टीम शामिल होती है या फ्रांस की। सो ये मुकाबला सैटरडे को होगा और याद दिला दूं कि फाइनल मुकाबला होगा 19 तारीख को। फुटबॉल के साथ हम जोड़े रखेंगे रैक लॉ के सौजन्य से, और रैक लॉ कह रहे हैं कि अगर आपको 15 मिनट्स का फ्री लीगल मशवरा चाहिए तो लाइका का नाम होठों पर लाइए।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
6: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're atoll protected.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click riffcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Cinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Cinderella, Panto fun for all the family. Radio partner, Leica Radio.
7: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics, and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema, Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love.

0: is Leica Radio across the Midlands. एका गोल्ड पर बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए. अब एक सूचना है हमारे पास और वो सूचना है किस विषय में, लेट मी टेल यू. एक तो भाई लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा. ये जो वार्षिक उत्सव है, एक बहुत बड़ा यूं कहिए प्रोसेशन होता है, 19 जुलाई को हो रहा है यहाँ. और इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम SKSST कैंटन हैरो. मंदिर है ये SKSST और भाई कैंटन हैरो के इस मंदिर से शुरू होकर के इट इज एंडिंग एट श्री स्वामी नारायण टेम्पल इन स्टैनमोर. अब ये पूरे रास्ते में श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर लेकर जाएंगे. वहां पर डिवोटीज विल हैव टू चांस ऑफ पुलिंग लॉर्ड जगन्नाथ जी से चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैरो एंड ब्रांड विद लाइव ऑन एयर अपडेट्स फ्रॉम रवि शर्मा. ये कौन है? और शर्मा जी की बात हो रही है तो भाई रवि शर्मा वहां होंगे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, करवाएंगे. वहां से आंखों देखा हाल भी हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे. सरिता सबरवाल होंगी मेरे साथ, अश्विनी होंगी और भाई आप हमारे द्वारा वहां से जो है रिपोर्ट सुन सकेंगे. लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड के प्रेजेंटर्स आपके साथ रहेंगे. टू फाइंड आउट मोर विजिट SKSST.org. तो भूलिएगा नहीं, 19 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समारोह लंदन में, आप भी उसका हिस्सा बनिएगा.
1: ये है लाइका रेडियो
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: बृहस्पतिवार है और भाई इसका मतलब आज हमारे पास दर्द भरे गीतों का भंडार है जिनमें आहें हैं, आंसू हैं, वियोग है, बिछोड़े हैं. आंसू ज्यादा हैं, दर्द ज्यादा है, यादें बहुत हैं और मुस्कान के क्षण थोड़े हैं.

0: Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और हमारे पॉडकास्ट का भाई 24वां एपिसोड आ चुका है. टाइटल है ईस्ट अफ्रीकन एशियंस. भाई उनकी जिंदगी प्रेरणाओं से भरी है. उनकी संघर्ष, उनका एक जगह से उखड़ना, फिर दूसरी जाकर के जगह जाकर जुड़ना और फिर कामयाबियां हासिल करना, ये सारी दिलचस्प बातें आपको वहां से जानने को मिलेंगी. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, Apple and other major streaming platforms.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
4: Yeah.
0: Leica Radio.
5: Leicester Miller is back.
1: And the stage is about to explode. Confirm.

0: energy and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

शिकवे में कभी और ना फरियाद में रखा, इस दिल को सिर्फ हमने तेरी याद में रखा। क्यों दिल पे तवज्जो की चले जाने से तेरी, क्या रह गया है इस खानाए बर्बाद में रखा।

0: महफिल में शमा चमकी तो परवाने चले आए। कुछ याद आ रहा है किस जमाने की कव्वाली थी ये, और भाई कौन होते थे उस दौर में हिट हीरोज हीरोइंस। भाई महफिल में शमा चमकी परवाने चले आए, ये कव्वाली गा रहे थे कौन कौन, पहचानी होंगी आवाजें आपने। और बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत, एक तो मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, ये गाना तो सब जानते हैं भाई, फिल्म हीर रांझा से था। महफिल में शमा चमकी, ये मेरा ख्याल है कवाली ली गई थी फिल्म गुनाहों का देवता से। और जितेंद्र उन दिनों भाई पर्दे पर अपनी जगह बना रहे थे, यूं कहिए कि एक के बाद एक फिल्मों में छा रहे थे, तो ये थे उस फिल्म के हीरो जिसका गीत अभी अभी आपने सुना, गुनाहों का देवता, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म। और याद आ रहा है, मुझे याद क्या आ रहा है कि ये फिल्म मैंने एक ऐसे सिनेमा हॉल में देखी थी जिसका स्क्रीन बहुत छोटा था, नाम काफी बड़ा था, शहर तो बहुत ही बड़ा था, भारत की राजधानी दिल्ली में एक शायद कुमार सिनेमा था नाम उसका, आई डोंट नो, पर स्क्रीन उसमें बहुत छोटा था। उतना बड़ा स्क्रीन तो हमारे स्कूल में बाद में आया था, उस पर भी हम फिल्म देखा करते थे, लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में ये जो सिनेमा हॉल था, और भाई वहाँ पे कई फिल्में देखी हमने, वो धर्मेंद्र की फिल्म शिकारी भी उसी एरिया में देखी थी, उसमें बड़ा स्क्रीन था। लेकिन साहब जहाँ भी देखने को मिल जाए बस देख लिया करते थे हम, ज़्यादा नखरे नहीं किया करते थे क्योंकि फ्री में देखा करते थे यार दोस्तों के साथ। राइट, दो गीत हमने आपको सुनवाया, याद दिला दो, ये मनोरंजन प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी दौर शुरू हो चुका है। और बहन भाइयों, अब आपको एक बार फिर से हम पाउंड का रेट बताएंगे, और ये भी याद दिलाएंगे कि हमारे बाद स्टूडियो में 1 बजे की खबरों के उपरांत बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे और बहुत सारी फिल्मी सामग्री वो जुटा के लाएंगे। फिलहाल लेट मी टेल यू द पाउंड्स रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, 1 पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में दे आर गिविंग 129.7 इंडियन रुपीज, 129.70 रुपए का रेट चल रहा है। सही मौका है पैसे भिजवाने का, यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 749. Lela Medium Atta 10kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5kg for 399. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1-2JU and 2A, Rollout Hill, Leicester, LE5-4UN.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
7: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
6: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत घुराया ते योगराज सिंह।
8: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
9: Create terror.
6: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
7: एक सिंह दा पुत्तर दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार ले लड़ूंगा भी।
10: Lester Miller is back.
11: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
10: Confirmed artists include Lember Hussainpuri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
11: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
12: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
13: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
12: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
10: Lester Mela is back.
11: And the stage is about to explode. Confirmed artist
10: H. Dami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
11: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
10: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
11: Arts Council England.
14: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
15: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
16: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भरे भाइयों, आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है रवि शंकर शर्मा, संगीतकार रवि। और भाई, संयोग की बात देखिए कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली फिल्म जो देखी वो चमत्कार देखा। स्कूल में वो क्या कहें भाई, पर्दा दीवार पर लगाया गया, उस पर जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी, उसमें जो गीत थे वो संगीतकार रवि की बनाई धुनों पर सवार थे। उन दिनों मुझे सिनेमा की समझ नहीं थी, स्कूल की बात, अब प्राइमरी स्कूल में मैं था और बड़े भाई के स्कूल में वो फिल्म दिखाई जा रही थी। 30 पैसे की टिकट थी, 30 पेंस भाई, आपकी आज के तो वो मेरे ख्याल 3 पेंस से भी कम गई है। अब वो टिकट भाई ने खरीदी, मैं फ्री में गया, और जब फिल्म देखी तो मैं हैरान था कि वो सब कुछ देखने के बाद में जिस दीवार पर वो पर्दा लगाया गया था, उस दीवार के पीछे देखने के क्या कि इतनी सब चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं पीछे कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तो भाई, संगीतकार रवि साहब से यूं सही कहिए कि दूर का परिचय तो तभी हो गया था। उसके बाद उनसे जब आमने सामने मुलाकात हुई, फिर मेरे घर पर भी आए, बाहर भी हम मिले, पिता समान थे मेरे, बहुत स्नेह करते थे। तो धुनों के बारे में बातें हुई तो भाई आज जो उनकी बनाई धुन पर गीत सुनवा रहे हैं ना, कहने लगे मैंने एक बार एक भिखारी को सुना, वो भिखारी जब भीख मांगता था ना गलियों में, वो गुनगुना रहा था और मधुर आवाज उसकी भाई टैलेंटेड लगता था। अब हम जो संगीत की दुनिया से जुड़े लोग होते हैं ना, जगह जगह से थोड़े थोड़े वो क्या कहते हैं भाई, संगीत के सुर चुनकर ढूंढकर सुनकर अपने संगीत में पिरो लेते हैं। अब वो जो लाइन गुनगुना रहा था उसकी आखिरी लाइन को ऐसे छोड़ता था जैसे डंप कर रहा हो, नीचे ला करके सुर जैसे कहते वो स्टाइल उसका मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि लाइन पूरी बोलेगा ऊपर सुर में और एकदम सात सुर नीचे गिरेगा। उन्होंने गा के सुनाया था स्टाइल जो है। तो कई बार ऐसे आइडियाज संगीतकारों को, गीतकारों को भाई गलियों में, सड़कों पे, बाजारों में, दफ्तरों में मिल जाते हैं। जरा सुनिए कौन सा गीत बनाया रवि साहब।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: मैं इनके द्वारा प्रायोजित गीत सुनाने से पहले बता दूं कि जो गीत हमने अभी अभी रवि साहब के संगीत निर्देशन में आपके सामने परोसा, बड़ा बेदर्द जहां है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां। राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की फिल्म थी और देवेंद्र गोयल थे भाई इसके लेखक, पटकथा लेखक और प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवेंद्र गोयल ने, और बाद में भी रवि साहब की धुनें लेकर के कई फिल्में बनाई, उनमें शायद 10 लाख भी एक फिल्म थी जिसके गीतों को रवि साहब ने धुनों से संवारा था, सजाया था। और भाई कई फिल्में हैं, रवि साहब इस सप्ताह के संगीतकार हैं और कल भाई उनकी धुन बजाने का इस टाइटल के तहत मेरा आखिरी दिन होगा ना, ढूंढ के लाऊंगा कोई ऐसा गीत जिसमें रवि साहब का चमत्कार जो है वो देर तक आपके दिलों पर सवार रहे। फिलहाल देखिए संयोग की बात, अगला गीत भी हमारे कंप्यूटर ने ऐसा ढूंढ के यहां जमा रखा है जो रवि साहब ने जिसका संगीत बना रखा है, ये मैंने नहीं कंप्यूटर ने रखा है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई याद दिलाता चलूं कि कई कार्यक्रमों के साथ, कई संस्थाओं के साथ लाइका रेडियो नेटवर्क का जो संबंध भाई मजबूती पकड़ रहा है, उनमें एक तो रागासन है, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com. और इसके अलावा भाई लाइका रेडियो नेटवर्क इज द exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story taking place at the OVO Arena Wembley on Sunday 27th September. Visit AXS or Wembley for tickets.
0: ये है Laika Radio. Laika
3: Radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ ऑल ट्रेन वालों का पैगाम है आपके नाम भाई, दे आर रिमाइंडिंग दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और लीजिए साहब, मैं करेंसी रेट्स बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं किसी भी देश में, किसी भी करेंसी में, तो नोट कीजिए। लैम्फाई वाले इस समय दे रहे हैं एक पाउंड के बदले में इन इंडियन करेंसी 130.06 रुपीस। मुझे लगता था ये 130 तक पहुंचेगा, तो भाई रेट इस समय 130.06, पाकिस्तानी करेंसी में 375.15, श्रीलंकन रुपए 453.8, बांग्लादेशी टके 166.42 और अफगानी 89.78।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
2: And the gold is sold at the rate of 96.23 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट, फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of सितंबर, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट बुक करें dmontfordhall.co.uk
5: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa Play Laika Radio Punjabi
1: Punjabi with Ravi Sharma.
2: तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो नाजुक हो नहीं सकता और ये पत्थर हो नहीं सकता। सदियों से राह तकती हुई वादियों में तुम एक लम्हा आके हंस गए और मैं ढूंढती फिरी। तुम फिर न आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए और मैं ढूंढती फिरी। और साहब इस तलाश में सोचा कि काश ये दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो न टूटता न फूटता न मानता न रूठता न बार बार हंसता और न जार जार रोता। लेकिन कहा ना, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता। वो दिल कहां से लाएं जो तुम्हें आसानी से भुलाए।

कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। एक और रवि साहब की बनाई धुन पर लता जी की आवाज। और बहन भाइयों, ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम। याद दिला दूं कि बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे 1 बजे की खबरों के बाद। रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, ये मत पूछिए कहाँ जा रहे हैं। भाई वही जा रहे हैं जहां दिल को करार मिले, हमको प्यार मिले, सबसे सत्कार मिले। और भाई एक पूरा भरा हुआ परिवार मिले, अपना छोटा सा संसार मिले, वहीं तक जाना है।

0: सपने में आबाद हमेशा रहती है, सपने में आबाद हमेशा रहती है, पहली मोहब्बत याद हमेशा रहती है। और बाली जी मुझे कहते हैं कि मैं भी उनकी पहली मोहब्बत हूँ।
1: पहली मोहब्बत जो स्टूडियो में एक दूसरे से मिलने से हुई।
2: यस, cheers, oh my god, you know who it is? Anisa Nasir ji, that's right, and she looks pink in health, believe you me.
1: Oh, aisa so like, sweet.
2: Ah,
1: so sweet.
2: Really really mere ko laga ke Sharmila Tagore aa gayi Kashmir ki gali se, itne acche lag rahe ho aap,
1: aisa mat kaho, mashallah, main 3 mahine ke liye gayab ho jaungi,
2: itni nahi nahi, aisa mat kijiye, the listener, everybody misses you so much. Aur mujhe itne messages aate hain, कहाँ है वो, कल हम गए थे
1: बीकानेर वाला
2: और वहाँ पे आपकी ईस्ट लंदन की सारी गैंग आई हुई थी, फरत हुसैन जी और आनंद पानाउज और
1: माय फेवरेट पीपल,
2: दे ऑल केम एंड सॉर्ट ऑफ ऐसे ऐसे देख रहे, आप सब आए हो, अनीसा जी आई है, it's lovely to see you, but when do we see you?
1: Well, that is a secret at the moment, but so hopefully soon.
2: मैं ये secret आपको जल्द ही reveal करूँगा जब वो हमें डेट देंगी जब वापस आ रही है, okay? And आज तो हम दोनों interview कर रहे हैं।
1: रंजीत रजवाड़ा जी,
2: wow,
1: what a, मैं कहती हूँ what an artist he is,
2: what an artist.
1: Anyway, आप जब मिलवाओगे तो लोग खुद ही समझ जाएंगे, जब वो बोलेंगे, जब थोड़ा सा गाएंगे, तो ऐसे आर्टिस्ट को ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत ही
2: नहीं, सच मैं बोलता हूँ, बिकॉज ही इज बीन सीन ऑन टेलीविजन न्यूमरस टाइम्स विद ऑल द धुरंधर names, you
1: I've
2: know.
1: hosted his show last year, and आप यकीन करो वो छाप अभी तक जो है वो हल्की नहीं हुई है।
2: Oh great,
1: he is too good.
2: Yes, and he's coming in for four more shows, I think.
1: Oh,
2: you know,
1: I don't know the, I don't have the details.
2: वो तो अभी आपको बताएंगे ना? Yes. And दूसरा, you are doing the YouTube channel का हमारे like a YouTube channel.
1: That's why I'm here.
2: So Anisa ji is conducting the interview with Ranjit Rajwada. And वो भी आपको हम बता देंगे कि कब आप देख सकते हो।
1: Absolutely. और so पहले sweet. तो आप जरा झंडे गाड़ेंगे ना उनसे, गपशप लगा।
2: हाँ, मैं थोड़ी गपशप, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ।
1: दूसरे आर्टिस्ट के सामने जब बैठता है ना, हाँ तो वो फिर मजा ही और होता है। So I'm so looking forward to that.
2: Cheers, same here. Such a pleasure. Such a pleasure.
1: Likewise.
2: Anisa Nasir ji. Hey, cheers. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट on Like a Gold with Gold Afternoons, and आज चार चांद लग गए जब अनीसा जी आई और वो आकर हमें अच्छी अच्छी बातें कर गई। हम रंजीत रजवाड़ा का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाले हैं स्टूडियो में, तब तक मैं आपको थोड़ा सा उसी मूड में ला दूंगा। रंजीत रजवाड़ा, द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल माइस्ट्रो इन इंडिया।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: And looking at the rates, which fluctuate quite often, £1 in British sterling, £1 in British sterling will fetch you 129.7. Yes, I repeat that, 129.7 Indian rupees for one British sterling pound. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
5: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting, dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Cinderella, Panto fun for all the family. Radio partner, Leica Radio.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: अभी आपने जो आवाज सुनी वो थी मेहंदी हसन साहब की, लेकिन मैं आपको एक आवाज सुनाता हूँ और उसके बाद आपको सब कुछ कहूंगा, क्योंकि आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट व्हाट आई एम गोना रिवील टू यू. ओके, एंड सुनिएगा.
3: चोरी चोरी हमसे तुम

0: Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: Lester Mella is back.
0: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
2: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
0: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
0: Arts Council England.
3: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work that way. Even a quick response, a quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposables. Disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
1: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
5: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
6: And I am super excited to introduce to you. Of course, aapne naam to sun hi liya. Varna main unke baare mein sab kuch bol kar at the end I would have said Ranjit Rajwada. Lekin inko agar main poochun ke aapne itna singing kiya aur 16 national awards aapne jeete aur aap sab logon se mil chuke. You know, Lata Mangeshkar ji aaj duniya mein nahi hai. जगजीत सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, मेहदी हसन साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे मुलाकात करना और सबसे अच्छी बातें सुनना और टिप्स लेना ये बहुत बड़ी बात है. तो इनके पास इतना ख़जाना है बात करने का, अगर मैं बोलता रहूँगा तो इनसे क्या सुनेंगे हम. सो आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट ऑल्सो द मैजिकल नाइट्स ऑफ म्यूज़िक दैट ही इज़ गोना डू इन लंदन एंड बर्मिंगम. तो इसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे. और आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू द यंगेस्ट, द यंगेस्ट गजल सिंगर ऑफ इंडिया, द माएस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा. आपका लाइका गोल्ड में स्वागत है.
7: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए. और मैं बहुत खुश हूँ कि लाइका गोल्ड रेडियो के ज़रिए मैं जितनी भी यूके के आवाम हैं
6: जी,
7: गज़ल लिसनर्स हैं, उनके दिलों तक और अपनी जगह गहरी करूंगा.
6: वाह वाह, ये बात हुई ना. अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात तो सही है
7: जी,
6: आप कितने बड़े बड़े नामों से मिले और उनसे कुछ कुछ सीखा, लेकिन द रियल मैन जिनको सारा श्रेय जाता है आपकी सारी जिंदगी का, जो भी आप कामयाबी पा रहे हैं 7 साल की उम्र से या तो उससे भी यंगर, आप श्रेय जाता है आपके पिताजी महेश पानवर जी को, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रेन किया गजलों में। Am I right?
7: बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही हैं। मेरे पिताजी श्री महेश रजवाड़ा जी जो हैं
6: जी,
7: मेरी जो तालीम शुरू हुई ही जब मैं 4 साल का था, और मेरे पापा जो हैं वो क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, गज़ल वोकलिस्ट हैं और म्यूज़िक से मास्टर्स भी हैं
6: जी।
7: तो उन्होंने मेरे अंदर वो संगीत का एक बीज उन्होंने रखा, और उन्होंने देखा कि मेरा जो बेटा है उसमें ही इज़ इन ट्यून, गॉड गिफ्टेड है
6: जी।
7: फिर उसके बाद तो मेरे पिताजी ने तालीम शुरू कराना, बचपन में ही सुबह 6 बजे बिठाना, 6 से 10 मेरा रोज़ का रियाज होता था स्कूल जाने से पहले, और ये देख लीजिए ये सिलसिला चला करीबन 17-18 साल तक।
6: वाह।
7: तो मॉर्निंग जो थी वो 4 घंटे मेरे पिताजी रियाज कराते थे
6: जी,
7: और ये देख लीजिए कि आँखें मेरी हैं, सपने उनके हैं।
6: वाह वाह वाह वाह, ये बात सही कही आपने। यू नो एंड आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ द ब्यूटीफुल गजल्स यू सिंग ऑफ गुलाम अली जी, जो अभी आपने सुनाया, देन जगजीत सिंह जी सुनना चाहता हूँ मैं, मेहती हसन साहब को भी सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से।
7: बिल्कुल, आपको सुनाएंगे।
6: बिना वक्त जाया किए हुए आप पहले हमें बता दीजिए कि शोज कहाँ कहाँ हो रहे हैं।
7: देखिये 30 जुलाई को मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ हैरो आर्ट सेंटर में,
6: वेरी पॉपुलर
7: सोल जैम उसके ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं
6: जी।
7: और 31 जुलाई को मैं कर रहा हूँ बर्मिंगम।
6: मिडलैंड्स वालों, सुना आपने, यस रंजीत रजवाड़ा इज कमिंग टू बर्मिंगम
7: जी, और सिफत इवेंट इस पूरे टूर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
6: जी, जी, जी,
7: उसको पूरा प्रमोट कर रहे हैं
6: जी, उसके जी,
7: पूरे मतलब ये कह लीजिए कि सिफत इवेंट वो है जो हम जितनी महफिलें गजल्स कॉन्सर्ट्स हो रही हैं वो वही ला के रख रहे हैं
6: मुझे। वाह, आपको सिफत से पहुंचा देते हैं।
7: जी, जी, जी।
6: अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि नोटेबल गजल्स जो आप लोग तो सुनते ही रहते हैं, जो फेमस गजल्स हैं सब सिंगर्स आके गाते हैं, व्हाट नॉट, बट यू गॉट योर ओन मटेरियल, इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तक एक सिंगर अपना काम नहीं करता
7: जी,
6: अपने आप और कोई ऑडियंस से एक आवाज आए कि उनको आपकी गजल सुननी है, तो अगर मैं ऑडियंस में बैठा हूँ तो मेरी आवाज आएगी कि तेरे ख्याल से ये बात है, मैं तो ये बोलूंगा तेरे ख्याल से।
7: बिल्कुल, मैं आपको आप ही के ख्याल से
6: जी जी सुनाइए ना प्लीज।
7: तेरे ख्याल से बढ़कर ख्याल क्या होगा, तेरे ख्याल से बढ़कर ख्याल क्या होगा, तू जिस

0: तेरे ख्याल से बढ़कर ख्याल क्या होगा।
1: ये बात मजा आ गया मुझे. और मैं कल रात को जब बैठा था, मैंने कहा मैं ये तो सुनना चाहूंगा ही, और आपने मेरी तमन्ना पूरी कर दी.
0: ये मेरी भी फेवरेट है, और क्योंकि ये मेरी पहली गजल थी
1: जी,
0: जो मार्केट में एज ए मेरी खुद की अपनी आई थी
1: जी.
0: तो आपने मुझे पुरानी यादें ताजा कर दी रिकॉर्डिंग की.
1: और इंडस्ट्री का क्या हाल है?
0: इंडस्ट्री का बहुत अच्छा हाल है.
1: हाँ.
0: और मैंने मेरी एक फिल्म आई थी लफ्जों में प्यार.
1: यस ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस,
0: थैंक यू सो मच. तो मैंने उसमें एज ए कंपोजर और एज ए सिंगर मैंने
1: 2023
0: करेक्ट दो गजल्स मैंने उसमें कंपोज की.
1: यस कांग्रेचुलेशंस. हां जी हां जी.
0: मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि गजलों को लेकर जो मेरा थॉट था
1: हाँ.
0: वो मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी रखता जा रहा हूं.
1: हां जी,
0: जितने भी आवाम है उनके आशीर्वाद से.
1: वाह वाह वाह वाह. अगर मैं इंडस्ट्री का हाल मुझे कोई पूछे तो ये शेर अर्ज है इरशाद.
0: इंडस्ट्री का हाल
1: शेर अर्ज करता हूँ.
0: मैं तो एक
1: आप बोलिए इरशाद तो मैं कहूंगा.
0: ओके, इरशाद.
1: जिसे देखो हवा में रहता है, जिसे देखो हवा में रहता है, फिर ये जमीन पर इतनी भीड़ क्यों है?
0: ओहो वाह वाह वाह,
1: दम है, दम है बात में. इंडस्ट्री के बारे में अगर बोलो, सोचो कितने फसाद होते अगर आंसू रंगीन होते. सोचो कितने फसाद होते अगर आंसू रंगीन होते.
0: रंगीन होते,
1: सोचो आंसू रंगीन, पटाखा है ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक नया तस्वीर है.
1: हाँ, दुख के आंसू लाल,
0: वाह,
1: खुशी के आंसू गुलाबी, दर्द के आंसू हरे,
0: बहुत अच्छे,
1: और दिखावटी के आंसू काले.
0: ओहो,
1: तो सोचो कितने फसाद होते अगर आंसू रंगीन होते.
0: बहुत खूब बहुत खूब वाली साहब.
1: बस अभी मेरा खत्म हो गया, अभी आप शुरू कीजिएगा.
0: बस ये कहूँगा कि गजलों को लेकर मैं एक सफ़र पे हूँ, और बस मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम तक वो गजलें पहुँचें. बड़ा एक शेर मुझे याद आता है कि
1: इरशाद.
0: मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है
1: जी.
0: दुआ करो कि जिंदा रहे मेरा हौसला, कि ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है.
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, वाकई बहुत दम है. कल मैं एक आपने गजल सुनाई थी किसी की, और उसके पहले आपने चुपके चुपके थे उसके पहले एक शेर अर्ज किया था
0: अपनी आवाज की.
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ,
0: अपनी आवाज की लर्जिश पे तो ना.
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो मैं आपको सुनाता हूँ.
1: अच्छा,
0: अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो.
1: क्या बात,
0: प्यार के बोल तो होठों से

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, महफिल जम चुकी, महफिल जम चुकी, इतना मजा आ रहा है सुनने का। सो आप थोड़ी वैरायटी हमें दीजिएगा, जैसे कि जगजीत सिंह जी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ प्लीज।
1: जगजीत साहब की गजल मुझे जो पसंद है
0: जी,
1: होश वालों को खबर क्या,

0: ये बात हुई ना, ऑनेस्टली व्हाट आई लव अबाउट यू इज व्हेन यू डू द वेरिएशंस, जो वेरिएशंस आप करते हैं, तो आप बैठ के सोच के करते हैं या स्पॉन्टेनियसली स्टेज पे?
1: स्पॉन्टेनियसली, क्यों वेरिएशन आप कभी, वो आर्टिस्ट क्रिएटिव इसीलिए है क्योंकि वो फिक्स करके नहीं आएगा.
0: हाँ जी,
1: वो जिस तरह का माहौल है ऑटोमेटिकली ना वो फ्लो के साथ, गजल के साथ बहता है.
0: हाँ जी,
1: राग
0: हाँ
1: के
0: जी.
1: साथ बहता है.
0: यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं सीख रहा था इन द बिगिनिंग, तो तब मुझे लगा कि यार मैं स्टेज पे करने जाऊंगा थोड़ा पंगा हो जाएगा, तो गलती हो गई तो घर से तैयारी करके जाता था. लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं हम, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है.
1: कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट. देखिए, ऊपर वाले का कर्म होना बहुत जरूरी है.
0: बहुत जरूरी
1: कि जब मैं बचपन में भी गाता था
0: जी,
1: तो मैं हमेशा से अपना बना के गाता था. मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, सुनना है, समझना है, देखना है, परखना है, खुद का बना के गाना है.
0: वाह वाह, ये बात है. और अगर पंकज उदास जी की बात करूं मैं,
1: जी,
0: you know,
1: जी,
0: उन्होंने भी बड़ा प्यार बरसाया.
1: बिल्कुल बिल्कुल, पंकज साहब के बारे में मैं कहना चाहूंगा.
0: हाँ जी.
1: कि एज ए गजल सिंगर तो वो अच्छे थे ही और
0: जी,
1: हैं ही
0: जी,
1: मगर एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कमाल.
0: God
1: बहुत
0: sent.
1: कमाल, बहुत God कमाल sent. बहुत ही, बोलते हैं ना, शांत स्वभाव के, उनसे मेरा बहुत प्यार रहा है. जगजीत साहब से रहा है, सभी से रहा है. पंकज जी से मेरा बहुत, पंकज साहब से मेरा बहुत प्यार रहा है.
0: उनकी दो लाइनें,
1: उनके तो चिट्ठी आई है से बेहतर कुछ हो नहीं सकता.
0: है तो, है तो.

0: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है।
1: वाह वाह। और उनका वो

0: क्या बात है, इसमें भी नशा है, सिर्फ आलाप में ही नशा
1: जी, है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आलाप एक कहन हो रहा है, एक उन सुरों में अपने जज्बात को कहा जा रहा है।
0: यस, और उसमें आपने उसमें भी कुछ वेरिएशन डाली तो इतना अच्छा लगा मुझे।
1: जी जी जी, अच्छा,
0: मिठास बढ़ गई।
1: हाँ, क्यों, वो सीखने के बाद चीजें समझ में आती हैं। सीखते हैं आप 10 साल 10 साल 15 साल 20 साल,
0: हाँ,
1: तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आती हैं।
0: ये कमरे की खामोशी, ये कमरे की खामोशी, ये तुम्हारे साज की सदा, जैसे रूह को मिल गई हो कोई नई दवा।
1: वाह वाह वाह,
0: इस महफिल से उठने के जी नहीं चाहता, इस महफिल से उठने को जी नहीं चाहता, तुमने तो बख्श दी है हमें एक रूहानी सी हवा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है बाली साहब।
0: दिस इज नन अदर देन रंजीत रजवाड़ा जी।
1: बाली साहब, मुझे यहाँ यूके आकर ना,
0: हाँ जी,
1: मुझे एक चीज, मैं कुछ सुन रहा था तो मैं दो लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा,
0: प्लीज,
1: यहाँ के लोग हैं उनके लिए।
0: मैं कहता हूँ, हाँ जी।

0: रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश हे सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश हे सही
1: वाह वाह वाह दिस इज सो फैबुलस आकाश मेरे पास वक्त होता कि मैं ये जारी रखता 3 घंटे के लिए लेकिन अनीसा नासर जी इंतजार कर रही है आपका और उनको भी एक इंटरव्यू करना है आपका और हमारे लिसनर्स ने कुछ लिखा है
0: जी जी
1: और उन्होंने ये कहा है कि ये कैसा नशा है आपके हर एक बोल में ये कैसा नशा है आपके हर एक बोल में कि दिल मचल रहा है खामोशी के शोर में
0: क्या बात है क्या
1: और एक और किसी ने लिखा है कि सुना है लोग कहते हैं कि पत्थर बोलते नहीं सुना है लोग कहते हैं कि पत्थर बोलते नहीं मगर तुम जब गाते हो तो पिघल जाते हैं
0: बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी इतने दिल से लिखा है ना? बहुत शुक्रिया बहुत बहुत
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लाइका गोल्ड
0: थैंक्स टू यू मुझे इतना प्यार देने के लिए और थैंक यू ऑल यूके ऑडियंस लाइका गोल्ड रेडियो की ऑडियंस को सबको मैं प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन एट हैरो आर्ट सेंटर
0: जी जी जी 30th July
1: यस पहली रो में तो मैं ही हूँ
0: बिल्कुल खुशी होगी मुझे आप सामने रहेंगे
1: ऑफ कोर्स वहां से सबसे ज्यादा तालियां बजेगी और मेरी फरमाइशें भी आती रहेगी अभी आपको आवाज सुनाई दी तो आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे मेरी आवाज को
0: आपकी आवाज को मैं बहुत सालों से प्यार करता हूं और जब आपसे मिला तो भी एक अनजान नहीं ऐसा लगा कि एक रिश्ता है
1: सो स्वीट सो स्वीट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल द लिसनर्स इट्स रंजीत रजवाड़ा एट लाइका गोल्ड थैंक यू वेरी मच So it's going to be Harrow Arts and in Birmingham, where is it?
0: Club 99.
1: Hanji.
0: Oldbury.
1: Okay, Club 99, Oldbury. Okay. Ek number aap sun lijiyega 07880-333-273. Ye number aap mujhe wapas bhi pooch sakte ho agar tickets mein takleef padi. Okay, all the best.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1-2JU and 2A Rollout Sill, Leicester, LE5-4UN. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039. 635757 Greens by Danube Prime Location
2: High Appreciation
3: in Dubai
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन

कुछ लाइनें जगजीत और चित्रा जी की। बिग थैंक्स टू रंजीत रजवाड़ा जी जो यहां लाइका गोल्ड में पधारे। नेक्स्ट आवर में रीटा बहादुरी।

रानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिर।

ले गई दिल गुड़िया जापान की, या गुड़िया जापान की, मॉडर्न जमाने में आउड़ा सेट कुड़ी जापान की। एनीवे, लव इन टोक्यो का गाना था और ये श्री 420 का गाना है। मेरा जूता है जापानी, है तो सब जापानी बात। सो आई होप यू एंजॉयड ये सहर जो मैंने आपको कराई।

0: The annual Rath Yatra this Sunday, 19th July, starting from SKSST Kenton Harrow Temple and ending at Sri Swaminarayan Temple in Stanmore. Devotees will have the chance of pulling Lord Jagannath Ji's chariot through the streets of Harrow and Brent with live on-air updates from Ravi Sharma, Sarita Sabarwal and Ashwini from Leica Radio and Leica Gold. To find out more, visit skssd.org. Leica
1: Radio. It's summer on the Leica Radio Network.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: White Hill Studios pesh karte han period action thriller
4: The Star.
5: Ek kalla kapda nahi hai, ek kahaniyan kai sariyan di.
3: Starring Tarseem Jassar, Geet Ghoraya, te Yograj Singh.
6: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
7: Create terror.
3: Vekho The Star tuhade nerle cinema karan ch 17 July nu.
8: Ek singh da putta The Star sajaunga vi te The Star layi ladunga vi.
9: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

बी एक छैली एंड आई आई बी एक छैला, तू साथ हमारे चलना, पीछे पीछे आना, रुक मत जाना, दिल हॉन्ट यू वेरी वेरी।

0: प्यार कर लो,
1: प्यार करते रहना। और प्यार करने के लिए सैंडी शाह आ रहे हैं और लाइक कर रही है मिडलैंड्स पे। इट्स गोना बी राजपत्तन, बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार।
0: मन भर लो।

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथहॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
3: Nazar se nazar.
2: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
5: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
6: दिल तो टूट भी गया,
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
4: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. You can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116-471-0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Get ready for the ultimate test of courage. Season 15, hosted by action maestro Rohit Shetty.
3: Welcome to Durga Capital, Cape Town.
2: Bigger stunts, tougher challenges, and fearless contestants battling it out like never before. Don't miss the adrenaline rush. Starting this July on Colors TV. Are you ready to face your fears?
4: Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
5: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.